0: भने पछि साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेका। एउटा मोटरसाइकल किनिदेऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु। ला
0: किनिदेऊ ल।

0: darkness of truth.
1: यसरी निमेष वर्जिलिक कबले निविजाले प्रकाश जस्तो प्रेमको के अर्थ